चुप्पी मार के खट खंड मान लो आज हजूर फिर चले गए। सुल्तानपुर के अंदर सारे शहर के अंदर के पहुंच गए कि नारद वे नदी डूब देवी नानकी भी कई ने जाती थी जैसे तेरा वीर वे नदी तो बाहर नहीं निकली और देवी ने जल्दी कि मेरा वीर कदे नहीं डूबता वो तो डूबिया उतारना पशु परेत मुगत को उतारे पाहन पास उतारे। हजूर सचखंड पहुंच सचखंड वैसे नरम का अगे नूर ही नूर जानना ही जानना उस ज्योति अंदर जाके हजूर लीन हो गए जो जर में जर आए खसाना क्या ज्योति सन जो कुछ समय के बाद उस ज्योति जो सोना कांतार से सतगुरु सामने सन्मुख बैठे आवाज आई नानक जी तुम महात्मा कल्प की जीवन निर्धार करने वास्ते वापस क्यों आ गए। हजूर ने किया मेरे दादा जी पहले तो सत्खंड के द्वारे से दरवाजे से अनेक ही राम अनेक ही कृष्ण अनेक ही मोहम्मद ईसा मूसा गोरख खड़ोते कहना जैसे सब कुछ आया जित दर लाख मोहम्मदा का ब्रह्मा कृष्ण पर महाराज तुम इन्हों अपने नींद क्यों नहीं आवाज आई ने मैं दुनिया भेजे जाके मेरा नाम जपाओ पर मेरा नाम जपान की बजाय अपना नाम दिया ने अपना नाम जपाया अपना करती अपनिया जनानिया का नाम लिया नहीं इस वास्ते मेरे दरवाजे तक पहुंच गए हैं मेरे विच नींद नहीं हो साहबान ने हथ की वाहिगुरु फिर करो कृपा असी माधवों में जाके की दुनिया में तो उस वेले अकाल पुरख ने हुक्म किया कि नानक जी ए नाम जान के दुनिया में छुपाओ खेड़ा ए नमकार।

करम मल उतरे सच्चे के गुण गाय गुण गावत ते उतर समय सच्चे के गुण गाय गुण गावत तेरी उतर समैल दिल सजाए होमे दुख है जन्म कर

लोग कोई महात्मा बुद्ध की पूजा कर रहा है, कोई महात्मा देव की पूजा कर रहा है, कोई शंकर की पूजा कर रहा है, शंकर वर्ण होया पे, कोई चंद्रमा की पूजा कर रहा है, कोई सूरज की पूजा कर रहा है, कोई धरती आकाश पौन पानी सब की पूजा विच लगा होया। ते उना दे अकीदे मुताबक ही नाम जप रहे ने, पर तेरा अकीदा है केवल वाहिगुरु, एक अकाल दी पूजा, तू एक अकाल दी पूजा च जुड़ जा, एक अकाल पुरख दे दर्शन कर, रब दे नाल बात कर, रब दी मिठ बोलड़ी भाषा वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु करेगा ना, जदों तेरा स्वरूप मिठ बोलड़ा हो जाएगा, तेरे स्वरूप दे बाहर वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु झलकेगा, तेरे शरीर दे विच वाहिगुरु वस गया, बाहर तेरे शरीर दे विचों वाहिगुरु वाहिगुरु दियां झलकां पैणगियां। इस करके

खिन में थापने वाजे ठाकुर, खिन में थापने वाजे ठाकुर, नीच कीट तय करे राजंगा, नीच कीट तय करे राजंगा, कभो न विसरा।

गुजरी दे चन माता गुजरी दे लाडले लूगे नजर जगत मात माता गुजरी जी दे ज़ियाए चश्म साहिब गुरु गोबिंद सिंह महाराज 1699 सन नूं भर जोबन विच सन। खूबसूरत लिबास जेबे गलू करके पहन के

हलत पलत दोइले हो सवार, राम नाम अंतर उर्धार, पूरे गुर की पूरी दिखिया, जिस मन बसे तिस साच परिख्या, मन तन नाम जपो लिवलाय, दुख दर्द मन ते भौ जाय।

संत बाबा तरसेंगे, महापुरुष मस्तुआने वाले। कोल गुरसिख बैठे ने, एक कल्याण सिंह भी बैठे। महापुरखा ने आख्या, अज भाई चित कर दे धर्म दे किरत दी रोटी खाई। किरत दी रोटी, कहन लगे महाराज जो हुक्म अज ही प्रबंध कर लेने हैं। मजदूरां वाले कपड़े पा ले, एक ठेकेदार दे कोल चले गए जेड़ा बिल्डिंग बना रहा सी। भाई कल्याण सिंह जी पंज सत गुरसिखां नू नाल लेके जदों उहदे कोल पहुंचे हन, कहन लगा जी असीं मजदूरी करना चाहते हां, करो। अठ घंटे काम करना पएगा, ठीक है करांगे। मजदूरी तय हो गई, जितना काम अठां घंटियां विच करना सी चौं घंटियां विच कर दिता। एक बारी प्यार नाल बोलिए सतनाम। ठेकेदार ने बुला के आख्या, ऐ फड़ो पैसे ते जाओ। कहन लगे नहीं, वायदा अठ घंटे दा, फिर दुगनी मजूरी देन लगा। कहन लगे नहीं, जो बचन होया है ओ ही लवांगे। कहन लगा पहले मजदूर वेखे ने अजीब आदमी हन, ऐसे बंदे ता मिले नहीं। खैर जदों उना पैसियां दा समान लियांदा, आटा प्यो दाल ते फिर हथी बना के बाबा अतर सिंह जी नू छकाया, छक के बाबा जी इतने प्रसन्नता विच आए, कहन लगे अज ते लंगर छकन दा आनंद आ गया, कल आपां भी चलांगे भाई। बाबा अतर सिंह जी ने भी मजदूरां वाले भेस कर ले। अज उसे ठेकेदार कोल पहुंचे, अज भी भाई काम मिलेगा। ते ठेकेदार उन्हां वल बार बार तक रहा है कि ए मजदूर नहीं हन, ए कोई फरिश्ते नहीं, ए कोई होर लोक दे बंदे आए हैं। जदों वेखद्यां वेखद्यां बाबा अतर सिंह जी ते निगाह पई ते चरना ते डिग पिया। कहन लगा तू मजदूर नहीं है, ऐसा नाम रतन निर्मोलक पुन पदार्थ पाया, अनक जतन कर हृदय राख्या, रतन न छपे छपाया। गुरु की सात संगत, कहन लगा तुसी मजदूर नहीं ते कल दा ही मेरे दिमाग ते बड़ा बोझ पिया होया है, ते अज तुसी आए हो मैनू माफी दे दो। मैं ए गुनाह नहीं कर सकदा कि तुसी मेरे सामने टोकरी चुको। कुछ सिख लंघ रहे सन, उन्होंने वेख्या होए बाबा अतर सिंह जी इत्थे खड़े ने, झट चरना ते मथा टेकिया। गुरु की सार संगत, कहन लगे बाबा जी आप दी किरत तां एहो ही है कि आप कीर्तन सुनाओ, सानू चंगे राह लाओ, ते आप इस भेस विच खड़े हो। ते फिर कहंदे ने बाबा अतर सिंह जी ने सिंघां वल वेख्या,
ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਆਏ ਸੀ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਪਕੜੇ ਗਏ, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਚੱਲਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ, ਚਲੋ ਭਾਈ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਕਿਸੇ ਕਿਰਤੀ ਦੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਘਰੋਂ ਸਾਡਾ ਲੰਗਰ ਆਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਫਿਰ ਜਿਤਨੇ ਦਿਨ ਮਰਜ਼ੀ ਕੀਰਤਨ ਕਰਵਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਲਿਖਿਆ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ 18 ਦਿਨ ਬਾਬਾ ਜੀ ਉਥੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਤੇ 18 ਹੀ ਦਿਨ ਫਿਰ ਲੱਭ ਲੱਭ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਰਤੀ ਸਿੰਘ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਬਈ ਬਾਬਾ ਜੀ ਲਈ ਲੰਗਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਧੰਨ ਭਾਗ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਲੰਗਰ ਉਹਨਾਂ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆਉਂਦਾ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਐ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰੇ, ਕਿਰਤ ਤਾਂ ਤੂੰ ਕਰਦੇ ਪਰ ਧਰਮ ਨੂੰ ਤੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਹੀ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ, ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੇਰੇ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਤੂੰ ਗਲਤ ਵੇਖੇਗਾ, ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਗਲਤ ਰਸਤੇ ਤੇ ਤੁਰਨਗੇ, ਤੇ ਸਾਡੀ ਕਿਰਤ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਬੰਦਾ ਲੋਭੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਮਿਲਾਵਟ ਵੀ ਕਰੇਗਾ, ਹੋਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਤਨਾ ਅਨਰਥ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਤਾਕੀਦ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆਓ ਇਹ ਤੁਕਾਂ ਪੜ੍ਹੀਏ ਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋਈ।

कितने भी चंगे कर्म कर लवे, ओदे कर्म कीते होए सारे निष्फल चले जांदे। जिवें कि 18 तीर्थ

बहुत प्रसाद करावे, पाठ करावे, पर जे निंदा हो गई ओ भी किसी महापुरख दी, ते कोई भी कीता होया कर्म फलीभूत नहीं हुंदा। जेड़ा मनुख इस भयंकर रोग

अर्जन देव जी अपने शब्द विच फरमान कर देंगे। निंदक दी ए निशानी है, जदों किसे दा भला हुंदा होया वेखेगा ते दुखी होएगा, ते जदों किसे दा बुरा हुंदा वेखेगा उदों प्रसन्नता।

गुरु की संगत अज दा शुभ दिन कॉन्फ्रेंस दे पहले दिन दी अरमता और बख्शिश सतगुरु जी दी। इस वक्त समा

बहलोक श्याने, तू बेअंत को विरला जाने, को विरला जाने। गाहे सूफी गाहे जाहिद गाह कलंदर में शब्द, गाहे सूफी गाहे जाहिद गाह कलंदर में शब्द। रंग हाए मुख्तलिफ दारिद बुते अजारे मा, तू बेअंत अपनी माया आप सारी आपे देखन हारा। नाना रूप तरे बहु रंगी सब तेरे निया, तू बेअंत ब्रह्मा न जाने अंत, अंत न पावत देव सबे। मुन इंद्र महा शिव जो करी, तू बेअंत अत ऊंचा ता का दरबारा।